0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेन्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा

0: करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प

0: गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting.
1: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3,00,000 लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

0: सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
2: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही हैं। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
3: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था। जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गाँव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
2: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी

0: जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी शैकलों में भारत की कुमकुम मोहत ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पद्मावत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, स्वरूप खान की आवाजों में एम टूरिस के बोल थे संजय लीला भंसाली की तरफ थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: श्रोताओं, सुरबहार की तानसी है विविध भारती की परवाज और आज 3 अक्टूबर है विविध भारती की सालगिरह का जश्न हम मना रहे हैं। दिन भर है कार्यक्रम, तो रहिए विविध भारती के संग और सुनते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में अप्रैल 1907 यानी 1907 में जन्मे वॉल्टर कॉफमैन, जो एक संगीत शास्त्री संगीत शिक्षक के साथ साथ एक कंपोजर भी थे, कई देशों में गए और समय बिताया। 1935-1946 के बीच कॉफमैन भारत में रहे। फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे। कुछ समय बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया उन्होंने और 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बन गए। कॉफमैन ने आकाशवाणी की संकेत ध्वनि यानी धुन बनाई, जिसमें तानपुरा, वायलिन और वायोला है।

0: दिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती के सालगिरह के जश्न में। सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
3: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
4: तो कुछ खास आवाज और इनके नाजो अंदाज से सजा है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के अवसर पर आप तक पहुंचेगा। रहिए विविध भारती के संग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, श्रोता उचित लोक कार्यक्रम में फिर हाजिर होते हैं।

0: प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और विविध भारती की अगर बेशकीमती सिग्नेचर ट्यून की बात की जाए, यानी संकेत धुन की बात की जाए श्रोताओं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड के गूंजते ओमकार नाद का स्वर है। वाल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिकल संगीत में दक्ष थे। 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नई संगीत शैलियों की रचना की। उनकी लिखी पुस्तक रागाज ऑफ नॉर्थ इंडिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है। आकाशवाणी के विलक्षण सिग्नेचर ट्यून की दिव्यता अद्भुत है श्रोताओं। सचमुच कुछ चंपई रंग लिए हुए ये धुन जब सुबह बिखरती है तो नूर बरसाती है।

जोधा अकबर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एआर रहमान की तर्ज थी, जावेद अख्तर की ये रचना थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

तेरे बिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं वजीर फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, विधु विनोद चोपड़ा की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज है।

0: वजीर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, यही है आज के चितलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आंखों की सिलवटें कहती हैं उम्र की एक दहलीज पार कर आए हैं, लेकिन विविध भारती के आंगन से गीतों की वही झनकार अब भी आती है, तो दिल से यही दुआ निकलती है कि तू शाद रहे, तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों की मधुरतान से आबाद रहे। श्रोताओं, विविध भारती के प्रसारण को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए शुरू से ही आज तक प्रयास किया जाता रहा है, और इसमें जब आपका साथ होता है तो विविध भारती एक नए मुकाम को छूती है, और आज भी विविध भारती की सालगिरह पर बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए खास पेश किए जाएंगे। तो चित्रलोक कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, लेकिन रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्झ वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर।
2: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
3: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी।
2: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।
4: सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन से।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

झाला हर एक शिपाई झाला तणु भारत भाग्य विधाता ही तुमची भारत माता।

0: अनु जी, यहाँ यादों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी,
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जेपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने की बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था एक सिटिंग में, एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,
1: नथिंग टू डू विद बॉर्डर।
0: ओके,
1: मैंने बैठा था एक सिटिंग में, जावेद अख्तर साहब थे वहां।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैंने ट्यून सुना, जावेद साहब को बहुत अच्छी लगी ट्यून, इतना ही। Unfortunately, तो वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई।
0: ओके,
1: ये जगह
0: जी,
1: बोला नहीं यार मुझे नहीं जम रही। ठीक है, हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
0: जी।
1: और हमारे मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया ये फिल्म आपकी, फिर ड्रॉप कर दिया है
0: जी।
1: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है, स्ट्रगल की
0: जी,
1: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जेपी दत्ता साहब आए, ओपी दत्ता साहब के साथ।
0: हाँ,
1: ओपी दत्ता साहब उनके फादर
0: जी। जी,
1: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला, सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अनु मलिक का, उस पर कुंडी लगा दो।
0: अच्छा, बंद कर दो।
1: हाँ, कि हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में चलता ही आया
0: जी। जी,
1: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है
0: जी। जी, जी,
1: कोई बात नहीं, कुंडी लगा दी आपने, बंद कर दिया।
0: हाँ,
1: बोला कि आप कुछ सुनाइए। मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई,
0: हाँ,
1: वहां जाकर मैं इतना इंप्रेस हो गया, मैंने ट्यून वहां से शुरू की।
0: हाँ,
1: गुजरने वाली हवा बता, यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब ने उसको मिला के देखते हैं।
0: हाँ,
1: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। See how songs are born.
0: जी, जी, जी.
1: This song was born out of an instinct के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
0: जी.
1: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने माँ बाप से दूर
0: जी,
1: अपने फैमिली से दूर, पति से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
0: जी
1: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते हैं वाज बॉर्न, संदेश से आते हैं वाज बॉर्न बिकॉज़ आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
0: क्या बात है,
1: आई लव माय ग्रेट कंट्री भारत, मैं दीवाना हूं इस देश का
0: जी।
1: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा, मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है, और अगर मैं अनु मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं
0: जी।
1: और
0: जी,
1: अगर अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है, नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना।
0: वाह,
1: मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ।
0: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
1: 11.5 मिनट का गाना है।
0: बताइए,
1: 11.5 मिनट का गाना, रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा। और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने, जितना उनकी तारीफ की जाएगा। मैं
0: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
1: कौन से गाने की बात कर रहे हैं?
0: ये जो एलओसी कारगिल वाला।
1: हाँ, एक सीमाएं बुलाएं भी लंबा गाना है।
0: हाँ,
1: एक मैं कहीं भी रहूं।
0: जी, जी।
1: ये भी मेरे देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
0: हाँ,
1: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति, वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूँ, मेरे गाने सुन लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये जरूर

ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं क्योंकि संदेशे आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाएं, रेडियो पर कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, कुछ एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेशे आते हैं, खत्म, दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म। इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है। तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करगिल। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रेडीज कवर होते हैं और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

0: सारे गाने बनाना आसान काम नहीं है।
1: थैंक यू सर।
0: तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद एलओसी करके अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रेडीज कवर होते हैं और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु मलिक कहानी बाकी है। 12 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर दिग्मांशु धूलिया लाइव विविध भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव प्रोग्राम में। ये वो गाना है जो हमारी तन्हाइयों का साथी है।

और ये गाना जिसमें एक फलसफा है, जिसमें एक नाजुकी है, ये गाने हमें गुजरे वक्त में ले जाते हैं स्वीट 90s में।

0: यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा।
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे, तो बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं बोला टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी को, तो भट्ट साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम, महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है
0: जी बिल्कुल।
1: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो, बोला तो ये मुखड़ा सुनो।
0: अच्छा।
1: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
0: हाँ हाँ।
1: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी
0: जी,
1: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनके बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शोभा जी भी थी।
0: हाँ।
1: और कहते हैं यार मेरे सामने तुमने बनाई है।
0: बिल्कुल।
1: ट्यून मैं ना बाजा भी नहीं था उस वक्त, ऐसे गुनगुना रहा था
0: जी,
1: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर।
0: हाँ।
1: छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और महेश जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई है, आप सुनो।
0: हाँ।
1: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: द ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड से वो दोनों का तालमेल हो गया। और महेश जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि गाना यहीं बैठे कैफी अंकल और यहीं बैठे महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
0: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
1: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये ये ये ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
0: बिल्कुल
1: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
0: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
1: बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
0: जी
1: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकरार है, छाई बहार है।
0: हाँ।
1: आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
1: हसरत जयपुरी साहब,
0: हसरत जयपुरी की।
1: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे।
0: हाँ।
1: मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनकी जो रिकॉर्ड्स आते थे ना
0: जी जी,
1: तो उनके बेटे घर में बैठ के मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
0: हाँ जी।
1: राज साहब के जितने भी गाने हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे
0: जी,
1: क्या बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
0: हाँ।
1: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
0: जी,
1: आपको याद होगा

0: राधा का संगम।
1: हाँ
0: ओ राधा तेरे बिना। अब यहाँ जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप, जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सुनी मेवाल का, तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं नहीं बिल्कुल वो बात है।
0: पहला मेरे लाइफ का पहला गाना
1: जी
0: वो संग बाय आशा भोसले।
1: क्या बात है।
0: 1977 मतलब 1975 में आई वाज ओनली 14।
1: हाँ
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये अब नाम है एंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है। जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरा भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सीखा है क्या। आशा जी ने पूछा, तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है। तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है। तो यहां सरस्वती माँ ही बोल रही है, और वही नतीजा है कि आशा जी लता जी रफी साहब, किशोर कुमार
1: जी,
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है।
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझ में पंचमता की खुशबू आती है। जब मैंने गाना बनाया था बनके नजर दिल की जुबा, कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था, मैं बोला क्यों, बोला जितना तेरा मुखड़ा मीठा है उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन हु मेक्स अ वेरी गुड अंतरा। ये हमने सीखा था आर डी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जानी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से। आप जितने भी गाने सुनते हो, सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो, मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ जहां ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते हो तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊ ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है, ये वो शख्स है जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है इनके साथ चार फिल्में की हैं आपने।
2: मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन।
0: उनके साथ मैंने गाना, सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात।
1: हाँ
0: ना निगली जाए ना उगली जाए।
1: हाँ
0: गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरस छीन कर लेके आते थे, तू हवा है फिजा है जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है, सौ दर्द है
1: सौ राहतें
0: सब मिला है मुझे एक तू ही नहीं।
1: क्या गाना बना है?
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे
1: बिल्कुल
0: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी,
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया। बल्कि अपने अपने अपने अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
0: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
1: जी,
0: इसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं, मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी,
1: मुन्ना भाई
0: MBBS
1: जी।
0: तो बहुत

0: से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. बहुत से सिंगर्स को हमने डिस्कवर किया है
1: जी,
0: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसका काम किया. मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है. ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूँ अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते. मैं बार बार कहता हूँ संगीत संगत का काम है.
1: जी जी जी,
0: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
1: जी,
0: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो मिलकर जान लगाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार. अब आप पूछोगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं.
1: यस yes.
0: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा, कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक के सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार. उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस वक्त साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता. सामने डायरेक्टर बैठा होता है. हाँ. और बोलता है मेरी सिचुएशन. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
1: जी.
0: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS.
1: यस.
0: गाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए. मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा.
1: हाँ.
0: और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा. आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन, आप क्या गाना सोचेंगे. हॉस्पिटल रात को गाना है. अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं. लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं, ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट वाइल मेकिंग अ सॉन्ग इज द कंपोजर.
1: यस यस.
0: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए हैं राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तर छेड़ी तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये.
1: हाँ.
0: बोला भी है कि अनु मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले. मैं दरवाजे से देख रहा था अनु मलिक यहाँ चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है.
1: अच्छा.
0: तो 15 मिनट में और मैंने ऐसे गाया देख ले आंखों में आंखें. अब ये गाना बना कैसे.
1: हाँ.
0: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको.
1: जी जी जी जी.
0: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा. He will die. He has got a terminal disease.
1: Right, right.
0: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए between 12 and 4. तो मैंने ये भी सोचा कि ये अगर मैं softly शुरू करूँ और भी patients हैं, तो मैं loudly नहीं शुरू करूँगा. loudly बाद में होगा. तो मैंने ऐसे शुरू कर देख ले आंखों में आंखें दासी गले जीवन के बल है चार याद रख मरने से पहले जीना
1: सीख ले
0: दुरुरम. तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे. तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है. और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे. और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूँ और बार बार घूम के इसी बात पर आता हूँ कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूँ. ये महान लोग हैं. आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके.
1: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो.

अब ये गाना फिल्म का नाम अशोका, गुलजार और अनु मलिक की जोड़ी।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब,
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने, मुझे इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसी गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए होए क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

0: आरती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी हैं आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अनु इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है, और कवाल को मैं जितने भी कवाल हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: बोला व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे बोलो जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं यहां से जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गया।
0: हाँ हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको।
0: हाँ।
1: ये तो सुना है। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलते हैं इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाटो भी लगाटो दारी रारी रा, ऐसा नहीं है तारे डांडे तारे डांडे तारे डांडे दान। तो इतने छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूसडे दा दा दा दा दा दा दा दा दा। तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हा, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है। तो मैं बोला ये जगह है देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ ये रिदम बिल्कुल
1: रिदम कैसे होगी। तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबला आता है ना टिपिकल ता ता ता ता ता ये होगा।
0: हाँ हाँ
1: ये ठीक होगा। मैं बोला आई वांट टू चेंज दिस थिंग, आई वांट टू चेंज इट।
0: हाँ
1: तो मैंने बोला भाई साहब मेरे बोला भाई साहब तबले बुलाते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तबले मतलब 20 तबले
0: 20 तबले।
1: हाँ मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे बाया नहीं बजाएंगे।
0: ओके
1: मैं तो बेस गिटार
0: तनांग चिक दुम तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तंग कचिक दिंग तनांग चिक दिंग।
1: अब ये साउंड जब बजा है रिकॉर्ड हुआ है तो तनानंद धारानंद धारानंद धारानंद धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम र तनांग कचिक दिंग तंग कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
0: हाँ।
1: इस पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके पर
0: जी।
1: और मेरे भाई साहब लगे उस पर
0: जी,
1: और हम बैठे हुए रात से सुबह हो गई
0: जी।
1: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है था ना उसके जो चाटी का साउंड उसको ट्यून के सुर में लाना था। कौन से
0: हाँ।
1: कौन सा जो मुखड़ा है
0: बिल्कुल
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया। अब ये इसी सुर में द तुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग था कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके

0: साउंड डाल के स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर हरा मनवर वहां साबरी ब्रदर्स वहां सोनू जी सब मिलकर जो फिर वो जो हरा नाची है
1: क्या बात है।
0: हाँ उससे बोले ये क्या गाना मिल गया और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था। बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर, आई टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा, पिक्चराइज पर शूट हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिनका मुझे बुलावा आया। वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बोला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारिया साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई तो मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था। और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ तर सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाए इसकेरिंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए हैं
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी
1: उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें।

0: तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है।
1: जी जी,
0: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूँ कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
1: बिल्कुल
0: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: यस यस यस,
0: एंड 2016-17 की बात है ये।
1: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूँ।
0: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

ठीक है ना भैया नुमलिका। विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है। विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अनु मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूँ जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहाँ मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऊपर वाले से कहता हूँ कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 इयर्स इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अनु मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे। और
2: दिस इज आकाशवाणी and I'm Shagun Chopra with the Midday News. The headlines. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program, Mann Ki Baat, completes 12 years today.

0: भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भील दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भील दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। साढ़े चार वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप विकसित देश और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में

0: आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया। और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय

0: ये वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं।
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर, 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन मरे। कौन ने पूछा? ये 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देके ये किडनैपिंग कर लाई तो पूरा

0: घंटे से पान सिंह नाम होगा,
1: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का

0: मान सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आई। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें दिग्मांशु धूलिया का। दिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार, 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी,
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये है कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर, जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए के बगल में लगा के सो जाते थे।
0: जी।
1: और हवा महल और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो है, जो इतिहास से पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत, इट वाज अ, इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे, तो हम इलाहाबाद में पढ़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग, नन्ही दुनिया,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया होते,
0: बड़े भैया जी
1: और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, जब युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना, कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी, उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: और क्या बात है?
1: वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है मैं, या लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है, तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
0: जी बिल्कुल। इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से,
1: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
0: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं, और
1: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
0: जी जी,

0: हैदराबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
1: नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
0: हासिल ही थी, अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
1: अब जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता है वो शहर, वो मुश्किल शहर है। अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहे या पौधा बोना चाहे, पर उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारी औकात है करने की।
0: जी,
1: तो
0: क्या बात है।
1: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया, तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था। तो बट वहाँ के लोग जो थे, उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा। तो मैं उनसे कहता रहा, भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है, मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है। अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की, मेरा एक भी दिन काम नहीं रोका, क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा, प्रोड्यूसर रुकेगा, अपने शहर लेके गए, उसका नुकसान होगा। तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी इलाहाबादी से ही लड़ रहे हैं, और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज हुई, बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
0: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये
1: हाँ, रोया तो रोने वाले। मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर बुला लिया
0: जी,
1: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे, वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है
0: जी जी,
1: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, उस लड़के को उसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
0: ओ बाप रे।
1: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे।
0: हाँ हाँ।
1: मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेके मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक फिर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा।
0: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए, और बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।
0: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये?
1: जी जी,
0: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत ये है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले।
0: जी, हमारी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी।
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी।
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी। तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही,
1: बिल्कुल बिल्कुल वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सबके दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल, मतलब कि मेरी हम, मैं, इरफान, हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला, ये सब जो थे तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी,
0: अच्छा
1: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी।
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: मेरा कजन ब्रदर है,
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था उनका कैरेक्टर?

0: था।
1: वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं। थोड़ी बहुत जो उसकी है कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो।
0: जी, एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह,
1: जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे? मतलब एक्टिंग आगे, एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं? मतलब
1: नहीं,
0: हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट, बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों, वो अपना अनुराग और कश्यप और जो
0: जी
1: कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छाबड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है। मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किए। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
0: जी
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत तरह एक चीज़ नहीं होती, हाँ बहुत चीज़ों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है,
0: जी
1: थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। उस यूनिट पर जब गया तो सब दोस्त थे,
0: जी जी
1: मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज होगा, तब सब दोस्त हैं।
0: जी
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा था शायद मैं घबराता थोड़ा, तो
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी,
1: अच्छा हो
0: तो
1: गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे?
1: हाँ नहीं,
0: क्या हुआ
1: विपिन,
0: था फिर उसके बाद? हाँ
1: वो विपिन को जब मारता हूँ कहाँ गाड़े थे उस वक्त, तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से,
0: जी
1: मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला अभी, मैंने कहा विपिन यार सिर्फ जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दूं क्या? कहे नहीं, मारना मारना।
0: ओहो,
1: मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कहे नहीं नहीं कोई नहीं, तो
0: अच्छा
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल नहीं
0: अच्छा,
1: हुआ।
0: ओके। और बात एक्टिंग की चली है, तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से।
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके,
0: जी
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की। जी
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव
1: मैं
0: साझा कीजिए।
1: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली। में
0: जी
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ गया कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जिस जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे,
0: जी
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस
0: जी
1: ये काम था मेरा।
0: जी तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने
1: हाँ
0: सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना,
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, ये गाना हम सुन लें।
1: जी बिल्कुल।
0: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है, और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा।
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे उस जिसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे
0: जी, जी,
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, टिफिन दो तीन उसमें वो होते हैं, दाल चावल
0: डब्बे
1: होते हैं, उसमें वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, और इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे एक डेढ़ दो बजे स्कूल से तो, और फट से बना बना खाना मिलता गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता
0: है, जी जी जी बिल्कुल,
1: कोयले में पका हुआ, एक तो ईंधन ही बचता है और इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वहीं की हैं,
0: बिल्कुल भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था
0: जी।
1: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सेल सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी वो तीन साढ़े तीन बजे में, भीषण गर्मी, रिक्शे वाले को ऊपर ले आता, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था
0: बिल्कुल।
1: ये उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के

0: उसको गुड़ दो।
1: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
0: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको परीक्षा वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
1: क्या बात है।
0: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की कि
1: ये सिखाया। और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
0: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा खून गोलियां बहुत चलती है, तो उनको इस बात का उनको वो है, वो एतराज करती है इस पे, कैसी फिल्म बनाते हो।
1: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील जहाँ प्रेमालाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
0: हाँ नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी। उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
1: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
0: नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
1: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
0: नहीं, बचपन से मुझे फिल्में ही हुई पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी वैसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी। मुझको थोड़ा जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है।
2: FM 101.5 MHz वर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या ऍपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र। ठीक 3 वाजता आहेत, प्रादेशिक मराठी बातमीपत्र आकाशवाणी महाराष्ट्र मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून काही क्षणातच आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत।

0: की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं और पुराने दौर के गोल्डन एरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
1: सुनते
0: हैं?
1: मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूं
0: जी,
1: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ। कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
0: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
1: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
0: जी जी,
1: जिसके गाने
0: बहुत ही खूबसूरत
1: गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
0: तो गाने आपके जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
1: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
0: जी जी,
1: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
0: जी,
1: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे अब सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
0: क्या बात है भाई, ये तो
1: जी, मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
0: क्या बात है,
1: वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वो ही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, तो उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर करके, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो पसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में कर बनते वो
0: जी जी।
1: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे
0: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए, शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का
0: जी जी,
1: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग
0: जी जी, तो वही गाना सुनते हैं।
1: Yeah.

0: साहिर साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और
1: दाग,
0: दाग फिल्म, तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो वो, उन्हें बड़ी जिज्ञासा है तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है, दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी,
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य तिग्मांशु, तेज जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी मेरा नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब क्या, तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रिलेवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
0: जी।
1: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, बहुत दिनों तक का ट्रेवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं, और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चल रहा है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धूले से थे और हम लोग रह गए वहां, और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
0: जी,
1: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
0: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं
1: जी। जी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
1: अब मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ, जिससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक एक फ्यूजन म्यूजिक का

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: और डायलॉग्स किए, और एक नाम है जानसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से

0: का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है जो होते हैं, तो
1: अजनबी गाना।
0: हाँ तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे,
1: जी
0: तो मैं उसका सीडी, अब जवान सी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
1: आपकी वाइफ ने रखा था।
0: हाँ घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं वो तो नामों को लेके उनका,
1: जी।
0: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना सुना शुरू शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से, के खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जान सी
1: क्या बात
0: कहाँ
1: है।
0: है, और वे तुलकर रुको रुको रुको रुको, ये जानसी बोलो, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्चुअली मेरी बेटी का नाम गुलजार साहब ने
1: क्या
0: रखा
1: बात है। तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
0: है। जान जैसी
1: जान जैसी,
0: सिंपल।
1: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और
0: जी
1: आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो उनके
0: अभी
1: बारे में
0: अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
1: आपको असिस्ट कर रही है?
0: हाँ
1: ओ
0: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा ये सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ तो वो मेरे साथ है अभी।
1: जी, कौन सी फिल्म बना रही है?
0: अभी तो मैं बना रहा हूँ तो मुझको असिस्ट कर रही है।
1: अच्छा।
0: हाँ तो बनाएगी
1: जी, तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा
0: जी,
1: क्या?
0: मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
1: जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल, हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर है, परदेश में है, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती, तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
0: जिमी से ये था कि मुलाकात, जब पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था।
1: सलोने से दिखते भी हैं
0: हाँ क्योंकि उसमें कैरेक्टर का वो
1: पर
0: था, दिखाना था कि
1: जी
0: किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है गुंडे के साथ, वो रहने लगता है और उसका कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा, तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
1: जी
0: तो
1: बताइए। बिल्कुल।
0: हाँ तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब, तो ये हुआ फिर ये क्या हुआ भाई, जैसे यारा दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
1: जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
0: जी
1: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
0: अब
1: और
0: आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
1: इंस्पायर हुए?
0: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना।
1: तो समाज के सामने वो सच्चाइयां लाना।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के पसंद आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो, तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का।
1: बिल्कुल, सच्चाई यथार्थ के करीब,
0: मतलब हाँ लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल,
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खड़ा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है।
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त दो दोस्त रखे।
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे,
0: हाँ बाकी
1: और
0: उसमें और
1: सैफ
0: भी
1: अली
0: कैरेक्टर्स
1: खान,
0: हैं। जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी

0: काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया, मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मैं एक बड़ा वो बैंड शायद भी हो गया था, एक शो था तांडव जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत गलत चीजें दिखा दी, उसके वजह से उसमें सैफ था। मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले मैं तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बताओ लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था। तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर,
0: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का, ये बड़ा यूनिक सॉन्ग है
1: जी,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
1: आपने कई बार
0: लता जी गा रही, मैं गा सुन ला।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं, 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है, और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी, लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के, तो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सबने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था, उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे, तो दूरदर्शन, एक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था, 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा, थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है फंक्शन में, इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो
1: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
0: दुलारे बेटे थे,
1: हाँ दुलारा बेटा था जैसे मैंने बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा कहा जाओ।
0: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
1: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
0: तकलीफों से नहीं गुजरे,
1: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ, मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
0: जी।
1: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, या फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहाँ, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो डिग जैम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता था उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
0: जी।
1: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा, मैं जब जहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
0: जी,
1: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं।

0: में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, सब नेवल फैसिलिटी,
1: जी
0: नो
1: जी
0: प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल,
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो। लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कर कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब NSD में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था।
1: जी जी,
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल रोल करके जिंदगी खत्म हो जाती।
1: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती हैं, तो और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: ये पार्ट टू का गाना है, जाते इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए वो ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ा हुआ, कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

आप चाहते हो ना कि जंग हो, होगी।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: ऐसी कोई बहुत लीक से हटके नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी जी
1: बाकी मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग।
0: जी
1: वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स

0: एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात, मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिलके, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर जब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप,
1: जी जी बिल्कुल,
0: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस, गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
1: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान, आपकी फिल्म,
0: जी जी,
1: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: कठिन तो कुछ नहीं होता
1: आपके लिए, तो बिल्कुल नहीं,
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं, आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है, वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया, और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीक है, तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, बैठे रहते थे अपनी जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग, सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जहाँ के मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है, या खुदकुशी की है किसी ने, और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वही नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी, अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम, तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में, तो ये सब चीजें, हाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
1: जी जी, डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाए?
0: जी सुनाइए, धाएं धाएं
1: सुनते हैं।

0: हिमांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद बारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने वहाँ पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई।
0: तो अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी

0: दे दर्शकों को?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क, या पॉलिटिक्स पे किसी ने, या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज़्यादा ये इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा, नई किताब है कुछ अच्छी नहीं तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग से लगता है फिक्शन बहुत। तो
0: जी
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे
0: जी
1: पढ़ता
0: जी
1: हूँ मैं। हाँ
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए, और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक
0: जी
1: हैं,
0: जी बिल्कुल।
1: उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं,
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी। और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए
1: अरे मैं
0: जो।
1: क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कोई पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 पूरे हुए हैं,
0: जी
1: उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
0: जी आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्वांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: Silence! Light! Sound! Camera! Action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी।

0: जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
0: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
0: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा सा में कन्वर्ट
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात का, अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ। वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी, ना बड़ों,
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
0: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे, करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं, करते करते वक्त बीतता गया। फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल,
0: है ना,
2: बिल्कुल,
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मुरैया गजानना, मुरैया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे
2: जी।
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनके जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
2: जी,
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
2: जी,
0: उसमें
2: जी,
0: मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा जाएगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा, पूर्णिमा श्रेष्ठा, एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए, उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों

0: से उसे राखी बांध रही। ने कहा छोड़ सुषमा छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूँगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम ताना ना ना ताना तर तर

0: जी का म्यूजिक था। वो गाना अगर आपको मिले प्लीज बजाइए। गाना अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम ताना नाना ताना तर तर ये दिल है दीवाना
1: जी।

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती है। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो। आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तू तू तू तू में हमें दिखाई देती है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने जी, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कराओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही।

0: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
1: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही गा सकती है, वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
0: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
1: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
0: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
1: हाँ।
0: मंदाकिनी जी, मुझे लगता मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक USP है
1: जी। लेकिन वो कमर्शियलाइज होती थोड़ा सा,
0: हाँ,
1: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
0: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
1: चुलबुलापन जो आवाज,
0: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो
0: ये
1: बाल
0: है,
1: बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
1: जी, जी।
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लग
1: जी।
0: तो टेक्सचर ऐसा सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी, प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है तो।
0: जी।
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी, तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती उनके संगीत को,
0: हाँ। उनके संगीत को, यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तु तु तु तु तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलो पछाड़ खाई वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी।
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
1: बिल्कुल।
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो,

0: पर उनके होने का एहसास
1: उनको
0: उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: एक बड़ा मन ही ये बात कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी नहीं।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेती हैं आपकी पसंद।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: तो
1: कभी।
0: पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था, तू तू तू तू
1: पहला तो वो था, तुम ताना नाना
0: जी,
1: ताना
0: जी।
1: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बिताए, तो वो ऐसे पहले बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रेटजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
0: जी,
1: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है।

0: है ना,
1: जी
0: पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है। मेरी पूरी जिंदगी ही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
1: है ना? सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी के जी
0: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब रहा।
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल।
0: है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं,
0: खुद से
1: बिल्कुल
0: ये कह रही हूँ
1: जी,
0: आज,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया।

0: वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले, तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं,
1: क्या बात है, क्या
0: वो
1: बात
0: तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका उनके डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंद और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है। हाँ, कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया। हाँ, ना तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशंस,
1: हूबहू,
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना, कितना तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया, छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते। हाँ, वो हम पर छोड़ देते।
1: जी, जी, जी।
0: सुने जैसा तेरा मन, ये सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात है।
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स।
1: जी बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होती है। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो आईक्यू है उसका जो
0: बहुत कम
1: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े, मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है।
1: हाँ,
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ाते।
1: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए,
0: प्लीज प्लीज,
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे
0: प्लीज।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और मैं दिल से कह रही
0: हूँ जी, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहाँ हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं, मंदा के नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे,
0: और उन्होंने सोचा भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ। यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं। जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छुमंत।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
0: जी।
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी ये एक

0: साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास है। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये
1: क्या
0: गाना
1: बात है,
0: गवाएंगे।
1: क्या
0: तो ये
1: बात है
0: कितनी बड़ी बात है, ये
1: जी
0: अहोभाग्य मैं कहूंगी।
1: जी
0: ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
1: क्या हो
0: सकता है
1: सकता
0: मंदा
1: है।
0: की निजी।
1: नहीं बिल्कुल
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ
1: बिल्कुल सही
0: है
1: कहा।
0: ना।
1: तो एक मराठी गाना सुन ले,
0: जी
1: बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा
1: हाँ
0: श्रेष्ठा के नाम
1: जी
0: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है।
1: जी
0: किल बिल पक्षी बोलते, झुर झुर झुर झुर झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्नी आले काही, स्वप्नी आले काही, एक मी गाव पाहिला बाई। किल बिल पक्षी बोलती,
1: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
0: तो
1: और
0: मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से बहुत ज्यादा, लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
1: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
0: जी
1: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
0: जी
1: बंगाली,
0: जी
1: नेपाली,
0: जी
1: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
0: जी
1: आपने
0: जी
1: गाया।
0: बिल्कुल
1: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
0: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ, मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
1: जी, गॉड
0: पर
1: गिफ्ट।
0: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आया, जब
1: मराठी,
0: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
1: हाँ
0: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: जी अनु मलिक के साथ
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
1: जी।
0: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी।
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ। माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी के या नहीं, नहीं है ना। अब आप बोलोगे कि अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरी रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
0: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना हो
0: जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
0: जी।
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, ये क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है,
1: तुला हुआ है, अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहाँ अभी मैंने देख

0: मतलब संगीत की ये हालत
1: हाँ
0: अगर हो जाएगी तो एक नया
1: तो
0: सिंगर
1: वो
0: क्या गाएगा,
1: पॉजिटिविटी
0: वो
1: आएगी कहाँ
0: सीखेगा
1: से,
0: कहाँ
1: है
0: से
1: ना?
0: आगे के लिए।
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
0: जी जी
1: जाएगी,
0: जी
1: है ना?
0: जी
1: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनके नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार बन
1: इतना
0: जाना।
1: कॉम्पिटिटिव
0: जी
1: वर्ल्ड है,
0: जी जी
1: क्या
0: जी
1: करेंगे वो?
0: जी जी वही
1: तो हमने
0: बात
1: सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
0: जी, ताकि आगे चलकर एक
1: उनको।
0: उनका भी
1: हाँ,
0: करियर जो बनता
1: हर बार
0: है।
1: उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में
0: जी
1: है
0: एक
1: ना?
0: गाना सुन लिया जाए,
1: कौन सा बताइए?
0: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
1: अखिया तो मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखिया तो चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
0: नहीं
1: पर
0: नहीं बिल्कुल
1: आज का ये मौका मैं
0: नहीं,
1: गंवाना नहीं
0: और हम
1: चाहती।
0: भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
1: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं जी। पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
1: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
0: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे, वो भी इस गाने को सुनना
1: बिल्कुल पसंद बिल्कुल। और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
0: यही खास
1: स्टेज
0: है।
1: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है जी। इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
0: अच्छा,
1: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते हैं जी। तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
0: जी।
1: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: प्लीज, चने के खेत में।
0: अरे
1: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी पसी गोरी।

ख्यालों का बुलबुला जब अचानक फूट पड़ता है तो याद आता है कि लिखने बैठे थे दिल का हाल, पर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाए। दूरी है जो परेशान कर रही है, तो क्या दूरी का यह एहसास लिख दें, या यूं लिख दें कि बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे, अपनी मोहब्बत का इजहार ही लिख दें। तुमसे हुई हर मुलाकात याद आती है, तुम याद आते हो, क्या उन मुलाकातों का हसीन ख्याल लिख दें।

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहां से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई भी शब्द उसे पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है। सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा नाम।

देखो ना, खत हमेशा साथ देने के लिए राजी हो जाता है, पर कलम पता नहीं क्या हो जाता है, इसे साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है, जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो, तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं।

जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो। तुम्हें ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिली तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लम्हे फिल्म के गीत से, जिसे गाया है इला अरुण और लता मंगेशकर ने बोल आनंद बख्शी के संगीत शिव हरी का।

कक्कर और इलारुन को फिल्म लम्हे में सुना। लाल सिंह चड्ढा लीजिए अब इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत प्रीतम।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया पतंगा फिल्म का गीत। शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है इंदिवर ने।

आतिफ असलम और पलक मुच्छल को सुना फिल्म थी रुस्तम, तर्ज बनाई थी जीत गांगुली ने, बोल लिखे थे मनोज मंतसर ने। अब सुनिए जाने अनजाने फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत तमाशा फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने, इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंगाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल है। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3

अब सुनिए आशा भोसले और आरडी बर्मन का गाया कारमा फिल्म का गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 7 फौजी भाई सुनी के विशेष जयमाला जो कि केंद्रित है संगीतकार एसडी बर्मन पर। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा कार्यक्रम में विशेष फीचर सुनेगा विविध भारती। रात 8 हवा महल में सुनो कहानी के अंतर्गत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा, वाचन स्वर ममता सिंह का। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार जेपी दत्ता पर। जी हाँ, फिल्मकार जेपी दत्ता पर। रात 10 छाया गीत प्रस्तुत करेंगी आरती श्रीवास्तव, ढलती जाए रात। रात 10:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

रोजाना सुबह 5 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। संगीत सहिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। कल सुनिए आप इसका चौथा भाग, आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शेखर सेन। समय सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 7 बजे भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे। पर सुनेगा हम हेरा ही प्यार के। त्रिवेणी कार्यक्रम आप नियमित सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम आप नियमित सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के पनकार, कल ही कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। इसे आप सुनते हैं सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। दिन में 11 बजे विविधा केंद्रित होगी रविंद्र जैन, जगजीत सिंह और निदा फासले पर। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। सुरीला सफर आपका पसंदीदा कार्यक्रम में कराएंगे 1 बजे। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। 3:30 पर नाट्य तरंग में असद जैदी का लिखा नाटक सुनेगा वॉयलिन वादक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत प्रसारित की जाएगी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम सुनेगा। 7 बजे विशेष जयमाला में सैनिकों की शौर्य गाथा में एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगावकर की गाथा सुनिएगा, आलेख एवं स्वर शेफाली कपूर का। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में सेक्सोफोन पर सुरेश यादव से बातचीत प्रसारित की जाएगी।

रात 8 बजे हवा महल में कामना चंद्रा की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी परिवर्तन। इसका पहला भाग सुनिएगा निर्देशन अनुराधा शर्मा का। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे यूनुस खान।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। सबसे पहले सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में प्रदीप का लिखा गीत, आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों के फिल्म का नाम अनमोल सितारे।

अभी आपने श्रेयस अधिकारी धर्माधिकारी के गीत संगीत निर्देशन में उन्हीं का गाया गीत सुना। फिल्म थी हनुमान अंश। इस गीत के साथ ही संध्या रंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार हैं गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में और आज हम तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित हैं। शेखर दादा, दूसरी कड़ी में हमने वंदे मातरम के बारे में श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई और मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बहुत सारी फिल्मी भक्ति रचनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने बहुत कम गाया और कम उम्र में सीखना शुरू किया और कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो ऐसे गायकों की आज चर्चा करेंगे, उन रचनाओं की चर्चा करेंगे।
2: जी हाँ, मैं दरअसल सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ जो पहली भारतीय फिल्म थी,
1: बोलती फिल्म
2: जी। क्योंकि उसके पहले तक हमारे यहाँ मूक फिल्में होती थी
1: जी।
2: संवाद नहीं होते थे, म्यूजिक नहीं होता था
1: जी। आलम आरा
2: तो सबसे पहली हमारी फिल्म थी आलम आरा, जो बनना शुरू हुई थी 1931 में 1931 में और 32 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में एक गाना था छोटा सा, एक जो फकीर है वो गा रहा है और बस उतना सा ही एक हिस्सा था, लेकिन वो उसके शब्द बहुत सुंदर हैं कि दे दे खुदा के नाम पे प्यारे
1: जी।
2: ताकत हो गर देने की, कुछ चाहे अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो गर लेने की।
1: क्या बात है।
2: तो आप ये सोचिए कि केवल दो लाइनें हैं इस पूरे प्रसंग में। दुर्भाग्य से वो फिल्म जो है वो जल गई थी, तो वो फिल्म का प्रिंट अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उसका संगीत जो है वो किसी बहाने वो बच गया और उसको कुछ लोगों ने फिर रिकॉर्ड भी किया, तो वो आज हमको सुनने के लिए मिल सकता है। और उस समय के एक बहुत विद्वान गायक थे शास्त्रीय संगीत के, उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब
1: जी। जी
2: तो वजीर मोहम्मद खान साहब ने ये छोटा सा हिस्सा गाया था। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब फिल्में शुरू हुई तो शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कलाकार, अभिनेता, नर्तक, ये सब लोग आके जुड़ते गए और उन्होंने हमारी भारतीय फिल्म की जो परंपरा है उसको एकदम शुरुआत

0: से ही बहुत समृद्ध किया।
1: जी जी।
0: तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब का स्वरबद्ध किया हुआ, ये केवल दो पंक्तियों का गीत उपलब्ध है
1: जी।
0: कहीं पर आपको भी खजाने से ढूंढ कर निकालना होगा
1: जी,
0: पर
1: जी।
0: मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने श्रोताओं को वजीर मोहम्मद खान साहब का ये भजन या उसको गीत कहें, सूफियाना अंदाजे का कलाम है, सब लोग उसका आनंद लें।
1: दे दे खुदा।

0: मुझसे चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर देने की ले ले।
1: आलमारा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और बताते चलें कि 1931 की पहली बोलती फिल्म थी जो दादा ने बताया, शेखर दादा ने भी जानकारी दी कि ये रिलीज हुई थी 1932 में। अब शेखर दादा एक और ऐसे गायक हैं जिन्हें 8 साल की उम्र में ही गायक सम्राट का दर्जा मिल गया था
2: जी।
1: तो उन गायक का नाम
2: दरअसल ये 1930 के दशक में
1: जी
2: ये बच्चा था छोटा सा
1: जी,
2: और चूंकि हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे
1: जी,
2: तो अगर कोई छोटा बच्चा गाता था तो हम उसको मास्टर कहते थे, और कोई छोटी बच्ची गाती थी तो नाम बेबी जुड़ जाता था
1: जी जी।
2: तो इस गायक का नाम था मास्टर मदन
1: जी।
2: 1927 में उनका जन्म हुआ और 1942 में उनका निधन हुआ। मतलब पूरा उनका जीवन कालखंड जो है वो सिर्फ 15 साल का था
1: जी जी।
2: लेकिन इस 15 साल में उन्होंने बहुत सारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया, और उस समय लोग पागल हो गए थे। मास्टर मदन एक ऐसा नाम था कि लोग सुनते थे कि मैंने कहीं अगर अनाउंस हो जाता था कि यहाँ मास्टर मदन आने वाले हैं या बच्चा आने वाला है, तो लोग पागलों की तरह वहां भीड़ जमा हो जाती थी। ये जादू मास्टर मदन के बाद फिर कुछ वर्षों के बाद दिखाई दिया था जब कुमार गंधर्व जी बच्चे थे
1: जी जी।
2: तो कुमार गंधर्व जी के भी लिए लोगों का वैसा ही क्रेज था, और मैं चाहता हूं कि मास्टर मदन का ये एक गीत आप सुनाएं। ये राग खमाज में है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि से जल करके कुछ दुष्ट लोगों ने उनको दूध में जहर मिला करके पिला दिया था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दाना भी मिल जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि वो दाना कितना पका हुआ है और कितनी सुगंधी। वैसा ही ये गीत है, पर मैं चाहूंगा पहले हम लोग राग खमाज का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं।

0: ये राग चाड़ो संपूर्ण राग है, जाते समय छह और आते समय पूर्ण संपूर्ण होता है, पर रे जो है वो मींड में लगता है, सीधे रे नहीं लगाया जाता। पर ये राग इतना प्रसिद्ध राग है
1: जी, जी,
0: कि मुझे लगता है कि सुगम संगीत की आधी रचनाएं
1: राग
0: खमाज में या मिश्र खमाज में या मांझ खमाज में आपको मिल जाएंगी।
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि हम राग खमाज में मास्टर मदन की ये रचना सुने
1: जी।
0: मोरी बिनती मानो कान्हा रे।

0: शेखर दादा, हम चाहते हैं कि राग खमाज में ही आप एक रचना खुद सुनाएं, क्योंकि आपके स्वर के लिए भी लालायित थे हमारे श्रोता।
1: मैं एक पारंपरिक रचना सुनाता हूं, क्योंकि हमारे पास दरअसल जो खजाना है
0: जी,
1: वो पारंपरिक इतना बड़ा खजाना है
0: जी।
1: तो एक कलाकार के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, श्रोताओं के नाते आप सभी संगीत सरिता के श्रोताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जितनी भी पारंपरिक रचनाएं हैं
0: जी,
1: उनको गाएं और उनको आगे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएं।

0: वाह दादा, आपने अद्भुत गाया। अब तो लग रहा है कि बस इस कड़ी को समाप्त न करें और आपसे अनुरोध करते रहें कि आप गाते रहिए।
1: नहीं, अब इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे अपनी चौथी कड़ी में।
0: जी,
1: आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाटले।

मुझे सभी संगीतकार भले लगते हैं और सारे गीत अच्छे लगते हैं, पर आज इतना समय नहीं कि मैं अपनी पसंद की सारी चीजें आपको सुनवा सकूं। आइए अब मैं आपकी भेंट कल्याण जी आनंद जी से करवाता हूं। जैसा इन दोनों का नाम है वैसा ही काम है, अपनी कंपोजिशन से संगीत का कल्याण करते हैं और सुनने वालों को आनंद पहुंचाते हैं। ये दोनों साथी बड़े हंसमुख हैं, सीधे हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और घमंड यानी प्राउड इनमें बिल्कुल नहीं है। मुझे कल्याण जी आनंद जी की एक रचना बहुत पसंद है। इन लोगों ने पुराने रंग को नए ढंग से बड़ी कामयाबी से पेश किया है, आप भी सुनिए।

फौजी भाइयों, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। ऐसी चीजें कम है जिसे सारे लोग पसंद करें। गानों का भी यही हिसाब है। हम लोग कंपोजिंग करते हैं, किसी को कोई धुन पसंद आती है तो किसी को नहीं। लेकिन शंकर जयकिशन का जवाब नहीं, ऐसी कंपोजिंग करते हैं जो सबके मन को मोह लेती है। जैसे मेरा जूता है जापानी, ये गीत हमारे देश में तो पसंद ही किया गया। मैंने रूस में भी इस गाने को ग्रामोफोन की दुकान पर, होटलों में और घरों में बाजते हुए सुना। इस गाने में शैलेंद्र जी ने भी अपनी कविता की चरम सीमा दिखाई है। सीधे साधे बोलों पर इतना सुंदर गीत लिखना केवल शैलेंद्र जी का ही काम है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए शेष भाग।
1: आज शैलेंद्र जी की याद मुझे बार बार आ रही है। उन्होंने बहुत कुछ सीखकर भी अपने आप को अनाड़ी कहा, और ठीक भी है। संसार में हम जितना सीखते जाते हैं अपने आप को उतना ही अनाड़ी महसूस करते हैं।

अलग अलग सिचुएशन पर गीत कंपोज करना आसान है, मगर फिल्म के थीम सॉन्ग को कंपोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थीम सॉन्ग फिल्म के साथ साथ अलग अलग सिचुएशन पर चला करता है और फिल्म की कहानी तथा थीम दोनों से ही संबंधित रहता है। इस तरह का एक गीत मदन मोहन ने बड़ी कामयाबी से तैयार किया। फिल्म है मेरा साया, गीत के बोल है मेरा साया साथ होगा, और ये गीत साये की तरह सारी फिल्म में चलता रहता है। कहानी पल भर को भी अपने थीम से अलग नहीं हो पाती। जितनी मेहनत और समझदारी से मदन मोहन ने इसे कंपोज किया, उसी तरह राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा भी है। ये गीत थीम सॉन्ग की हैसियत से एक कामयाब और यादगार गीत है।

तार सप्तक पर जाते समय बेगम अख्तर की आवाज़ में जो बल पड़ता है बस वही उनके गले की सुंदरता है और यही बात किसी दूसरी आवाज़ में नहीं, तो फिर क्यों ना इनसे एक गज़ल भी सुन ली जाए। लीजिए बेगम अख्तर से गज़ल सुनिए, गज़ल के खास स्टाइल में।

0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं
1: विशेष शेतकरी बांधवांनो सादर करीत आहोत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इधर क्या कर रहा है?
1: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
0: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
0: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा
0: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी या कार्यक्रमाचे सादर करते होते रोशन जाधव ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राहत फतेह अली खां और सुजैन डिमालो की आवाज से। फिल्म का नाम है वीर, बोल गुलजार के संगीत साजिद वाजिद का।

0: मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा को। संगीत ए आर रहमान का, बोल इरशाद कामिल के। फिल्म का नाम रांझणा।

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कृष्णा का संगीत बद्ध किया और राजशेखर कलिका तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, आवाज शफाकत अमानत।

और ये है चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दीपाली साठी की आवाज में। फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी। वो लिखे रश्मि विराग ने, संगीत तैयार किया है जीत गांगुली ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस NPAs ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि PM मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात

0: कोहना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
2: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल है। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
3: यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
2: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
4: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
2: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना

0: और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी कासिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
2: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, अब दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: IT 名古
1: 屋。20वें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके। मैच की मीमांसा मेघा से।
1: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड द एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप अ हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
0: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी। सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही चॉइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ, बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स

0: अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी अर्श क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी अर्श getting the gold medal for India at the Asian Games 2026. Pranavi Urs held her nerves to win the women's individual golf gold medal, finishing the four-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही है मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye Jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Taeyong in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेवस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें, हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97

0: किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ

0: भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीत कर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6वें स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की, उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीत कर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने 4थे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th-6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: Kashish Malik bowed out of the women's 56kg round of 16 event at the Asian Games 2026 in Taekwondo. She was defeated by Kim Yujin of South Korea in this round. In the women's 67kg round of 16 in Taekwondo, Jyoti Yadav lost to Kanala 0-2. She was thus knocked out and India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
4: In sailing, 16-year-old Mahi Verma finished 6th overall in the girls' Dingy event as the competition concluded today. Mahi completed the 12-race opening series with 75 total points and 57 net points. She finished 8th in opening series race 12.
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
4: Courtesy of a late surge that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
4: Beyond the medals and the final standings, one of the biggest positives for India at these Asian Games has been the emergence of a new generation. Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than 1 in every 4 Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tarial won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60kg category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skate, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mix.

0: team. Neerudhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

परंतु जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया।

दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल GDP ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस NPA कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
2: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन यूएस डॉलर।
1: संरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक

निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।

0: बन जाए। और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल है। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyay Sanhita BNS is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within